ऐं सिमट पियो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बतुत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्राय तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो।

करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

और आरफा उनका टरुंगाई कहती है कि क्या मंजर था फिल्म में, जितेंद्र थे और जिस तरह से ये गा रहे हैं ना मोहम्मद रफी, उसी तरह से जितेंद्र नाच रहे हैं, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, लेकिन पहाड़ी है, पहाड़ी पे छलांग मारते हैं, उछलते कूदते हैं, क्या हीरो थे जितेंद्र, कहती हैं लड़कियां मरती थी इन पर, अच्छे थे मतलब के ठीक ठाक एक्टिंग थी। आरफा थैंक यू, जैनुल मोहम्मद वेलकम, आप बेमिसाल अंदाज से जुड़ गई हैं कुछ दिनों के बाद, अच्छी बात है, आपने कहा मिस किया है, कोई बात नहीं, अब करते हैं, अब लाइफ इज लाइक अ डाइस, वी नेवर नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, साना बिल्कुल ठीक, चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना थैंक यू। और अ ग्रोसर इन कैनेडा कीप्स प्लेन पेपर बैग्स ऑफ एसेंशियल्स नियर एग्जिट सो पीपल कैन टेक फूड विदाउट एम्बेरसमेंट, वाह क्या बात है, प्लेन पेपर बैग्स वो रख देते हैं ताकि लोग जो मेरे ख्याल से हाजतमंद हैं वो खाना उठा के ले जाएं और लोग बाकी उनको देखें ना, कुछ इस तरह से है। भरत गंगाराम नमस्ते नमस्कार वंदनीय परवीन जी, सभी लिसनर्स को थैंक यू। और एमएल विश्वकर्मा कहते हैं कि देर इज अ रेलवे स्टेशन नेम्ड नवापुर इन इंडिया, नवापुर है कि नवापुर है, द प्लेटफॉर्म 800 मीटर्स लॉन्ग, 500 मीटर प्लेटफॉर्म इज इन महाराष्ट्र, 300 मीटर इन गुजरात, there is a wooden bench for sitting, the bench 50% is in Maharashtra and 50% in Gujarat, while sitting in Gujarat side one can eat gutka pan masala but cannot drink alcohol, sometime while sitting Maharashtra side one can drink alcohol but cannot eat pan masala, kya baat hai ye, acha sarhad par hai ye koi platform, public announcements are in Gujarati, Marathi, Hindi and English and ticket booking window in Maharashtra and passengers waiting room in Gujarat. Achha, wait karte hain Gujarat mein aur booking karte hain Maharashtra mein. Waqai, ye toh phir koi unique railway station hoga.

0: अमामत कहते हैं कि एक फिल्म है फूल बने अंगारे, उसमें एक गाना है चांद आहें भरेगा। ओके, हम आहें भरने के मूड में नहीं थे, फिर भी मैं थोड़ी देर के बाद, दो तीन गानों के बाद ये आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ। लेकिन मूड देख लिया करें कि अगर तो बहुत हम मस्ती भरा मूड क्रिएट कर रहे हैं। और सब मैं आपको बताने वाली थी कि फिलीपींस के डिफेंस मुशीर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होते हैं ना, तो समझ वो भाषण दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, मतलब कि एड्रेस कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। तो आपने देखा है कि लीडर जब खिताब कर रहा हो कोई, तो कई बार ऐसा होता है कोई पीछे से आके उसके उनके बाजू पर हाथ रख के कहता है कि ये मत कहो, वो ना करो, ये ना करो, या उनको एक छोटा सा नोट दे देते हैं जिस पर लिखा होता है, कोई धमकी होती है, कोई हुक्म होता है कि ये जो कह रहे हो बंद करो, वगैरह वगैरह। और आम तौर पे क्या होता है, वो शख्स अचानक अपना वो खिताब बंद करके चला जाता है क्योंकि ऊपर से आया हुआ होता है हुक्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगी, पहले मस्ती भरा सा।
1: ये मस्त नजर

0: अगर वो दोनों नहीं कहते तो अजय पाल आए हैं, कहते मैं कह देता हूँ। और क्या कहा है
1: परवीन जी? तुकाराम मुंडे ने सबको परेशानी में डाल दिया, तुकाराम जी ने सबको परेशानी में डाल दिया, सड़ा गला खाना कूड़े में डाल दिया, बंद कर दिए भोजनालय रेस्टोरेंट, बंद कर दिए भोजनालय, आजकल लोग घरों में ही खाते हैं, कहीं रेड ना पड़ जाए तुकाराम की, कहीं रेड ना पड़ जाए तुकाराम की, इसीलिए महिलाएं रसोई घर को बार बार चमकाती हैं। तुकाराम जिंदाबाद, आप सब भी बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू
0: जी। हाँ जयपाल, हालांकि मैंने जो बताया था, मतलब कि के ने जो कहा था कि आजकल तो गंदा कर रहे हैं अपने बावर्ची खाने को, कि वो आकर बंद करवा दें। अच्छा, एक और ब्यूटीफुल गाना।

अमीर अली राणा कहते हैं कि पता क्या, जो भी कर लो, तोता राम ले आओ या पोपट राम ले आओ, लेकिन गंदगी जो सामने रेस्टोरेंट्स में होती है उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। खैर सलमा, आपकी फरमाइश।

0: थी कि जरा स्टिफ थी फॉर हर रोल्स जो इंडियन पर्दे पर उसको निभाने थे. अच्छा, थैंक यू आरफा शनाज बट फ्रॉम तंजानिया एंजॉइंग. और जैनुल मोहम्मद कहती हैं फिल्म साथी का आपने गाना सुना के माँ की याद कर दिला दी. जी हाँ, लायन दिलशाद बहुत पसंद करती थी मुकेश को. भास्कर पटेल इन मैनचेस्टर, करेक्ट आंसर है आपका. और फातिमा कासम अली एंजॉय कर रही हैं प्लेलिस्ट और सही जवाब भी दिया है, बहुत खूब. आपके बाद करेक्ट आंसर वासुदेव हिरानी. बिल्कुल ये ठीक आपने कहा है कि यहाँ पर ये हुआ है. चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना, चिराग पटेल ने भी सही बताया है. भरत गंगाराम करेक्ट आंसर. और आशा भीमानी आपने भी सही जवाब दे दिया है. सना गलत है. और मंजुला विश्वकर्मा करेक्ट. साथ आते हैं आती हैं ज्योति फ्रॉम रुईरू, बिल्कुल करेक्ट. अब मुझे बताएं समिन आपका आंसर ओके कि आंसर तो मुझे पता चल गया, आपको सबको पता चल गया है. एक कॉल है तो वो भी मैं सुनाई देती हूँ.
1: रुहिन जी नमस्कार, जो आपने पूछा ना मैंने भी कल न्यूज में देखा. आपको पता ये बैप्स वाले हैं ना, जो स्वामी नारायण वाले, ये जो संत होते हैं ना, हम भी कभी ये रूरू मंदिर में जाते हैं तो संत आते हैं ना, तो औरतें लग बैठती हैं, ये बोलते हैं हम ब्रह्मचारी हैं तो हम औरतों को मतलब फेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये फ्रांस में ना ये बैप्स मंदिर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ना बोला कि वो औरतें निकल जाएं. तो आपको पता है वहां तो ये बहुत बुरा मानती है ना औरतें, तो इसलिए वो जो फ्रांस की लेडीज है ना प्रोटेस्ट कर रही हैं. रितु गुप्ता.
0: सो द आंसर वाज आइफल टावर, जिसको तू गफेल कहते हैं फ्रेंच में. समझ, उसको बंद करना पड़ा, औरतों को तो निकाल दिया, दूसरे दिन उसे बंद करना पड़ा बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं कि ये क्यों किया गया है, ये हमारी रिवायत नहीं है. कहना था ये कि ये हमारा कल्चर नहीं है कि औरतों को इस तरह से अलग करना. ठीक है, सो आज मेरे ख्याल है खोल दिया होगा आईफल टावर को, लेकिन ये पता चल गया है रितु से कि वो नहीं देखना चाहते हैं औरतों को, ये जो संत होते हैं.

0: और ज्योति फ्रॉम रुईरू, आपका भी आंसर बिल्कुल सही था, आईफल टावर. और यहाँ पर हैं जी हाँ शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कहती आई डोंट नो अबाउट केन्या बट हियर तबलीगी जमात डोंट अलाउ लेडीज इन ग्रेवयार्ड इन मॉस्क्स इन मैरिज फंक्शंस इन बयान्स लेडीज सिट सेपरेट. मुसलमानों में भी वो कहती हैं कि ऐसा ही होता है कि ख़वातीन को कहते हैं कि आप कब्रिस्तान नहीं जाएंगी, ख़वातीन मस्जिदों में नहीं जाएंगी, ख़वातीन अगर शादी के फंक्शन में आएंगी तो वो अलग बैठेंगी. ये बिल्कुल होता है शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ना जाने समझ क्यों औरत को, बस औरत को अलग करने की कि ये क्या मुहिम है, मुझे समझ में नहीं आती. और वो इसका मतलब कि मुझे ये जवाब भी नहीं मिलता रीज़न कि औरत को, वैसे तो आपके रिश्तेदारी है औरतों के साथ, आपकी दोस्त आप जहाँ काम करते हैं वहाँ तो नहीं कह सकते ना कि मैं इस कमरे में नहीं बैठूँगा, मैं इस मेज़ पे नहीं बैठूँगा क्योंकि यहाँ एक महिला बैठी हुई है. आप काम करते हैं, आप दुकानों में जाते हैं तो वहाँ शायद कोई औरत सेल्स गर्ल हो, आप तो नहीं कह सकेंगे कि जाओ एक मर्द को एम्प्लॉय करो इससे पहले कि मैं आपसे एक माल खरीदूँ. ये मुमकिन ही नहीं है कि औरतों को आप अलग कर दें. तो समिन वो मस्जिद जाने का जो है वो कहते हैं कि मर्द जाए मस्जिद में लेकिन औरत ना जाए क्योंकि उसको घर के काफ़ी काम है, घर में ही वो नमाज अदा करे. इसका भी नहीं पता चलता कि क्यों हुआ शुरू, क्यों इस तरह से हुआ है. तो समझ ये बात है. जतिंदर कहती हैं कि यहाँ भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर वो नहीं इजाज़त देते जब वो आते हैं, बड़े आते हैं पंडित वगैरह, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमने औरतों के साथ नहीं बैठना.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: The spicy spot on the Kenyan premier Asian mix.
3: Shape your future at Uniserve Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26th September from 10 a.m. Entry free. Uniserve Education. Master your own destiny.
4: Nairobi Sports House brings you magnificent range of Shogun fireworks to light up your Diwali. Get your Shogun fireworks and gifts from one-stop Diwali shop at Ram Mandir, Banderi Road, Parklands, also Sri Icon 3rd Parklands, Sri Gurdwara Ramgarhia Railway South Sea, Nairobi Sports House, Mombasa branches, City Mall, Niali, Faza and Likoni Mall.
1: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
5: East FM.
1: Celebrating your favorite occasion. East FM.
5: Kenya's premier Asian mix.

और आल्फा कहती है यही हाल होता है ना जब आप नहीं आती वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं आल्फा व्हाट अ कंपैरिजन ग्रेट थैंक यू क्रिश्चियन सर्वे ने लंदन से कॉल की है कहती हैं ये कॉन्सेप्ट कि औरत यहाँ ना आए वहाँ ना आए काम ना करे चंद दिन महीने में वो नहीं आ सकती बावर्ची खाने में ऐसी कोई बात सिखिज्म में नहीं है सिखिज्म में औरतें जहाँ चाहें नापाक हों या पाक हों वो काम कर सके जहाँ जाएं काम करे जब चाहे तो कहते हैं कि ये बात मैंने कई स्कॉलर से भी दानिश्वरों से भी पूछी है उनके पास कोई जवाब नहीं है कि महिलाओं को क्यों किसी काम से रोका जाए किसी जगह आने से रोका जाए बैठने उठने से रोका जाए ये करने से रोका जाए कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सिखिज्म में नहीं है ओके दैट इज़ वेरी गुड टू नो और यहाँ पर हैं शैलेश और शीला एंजॉय कर रहे हैं ओल्ड इज़ गोल्ड बिल्कुल सही आपने कहा है और समीन मैं आपको कह रही थी ना कि मैंने कहना है बताना है आपको कुछ खबर देनी है ब्रिटिश टेक कंपनी समझिए आजकल टेक्नोलॉजी की कंपनियां अरबपति बनी हुई हैं इनके मालिक रने हास ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिए आपको पता चलाना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या मस्नूई जहानत इसको कहते हैं कि एआई कैंसर का इलाज ढूंढ लेगी और वो भी हमारी जिंदगी में मतलब कि इतने भी साल नहीं कि आप कहें कि हम तो होंगे नहीं इसका फ़ायदा हमें तो नहीं हो सकता लेकिन वो कहते हैं आपकी ज़िंदगी में एआई इसके लिए आसान होगा ये पता चलाना कि कैसे कैंसर डीएनए मार्कर को बदल देता है ये अगर वो लिंक पता चला ले ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इंसान के लिए मुश्किल तरीन काम आसान हो कर देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: और हितेन यूनाइटेड किंगडम में है. कहते हैं कि ये जो हो रहा, जो पेरिस में हुआ वगैरह, कि उन्होंने कहा कि औरतें ना, इस पर मैं कुछ खास कहना नहीं चाहता, लेकिन आई एम टोटली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीमेन. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दीज मैन फ्रॉम वट एवर रिलीजन दे आर हु डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन. आई वॉन्ट टू आस्क दैम विच जेंडर गेव यू बर्थ. कहते हैं कि मैं उन लोगों से एक सवाल करता हूं कि आपको जन्म किसने दिया कि आप उसी के खिलाफ कवानीन बनाते फिरते हैं, उसी के खिलाफ नियम तैयार करते रहते हैं और उसी के खिलाफ आप इम्तियाजी सलूक डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ओके, ये वो कहते हैं कि किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा. हितेन, बिल्कुल सही कहा आपने. मिसेस धंजल.
1: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग. मिसेस धंजल हियर. प्रवीण जी, आज का जो टॉपिक चल रहा है, प्रवीण जी, अभी भी मैं तो अभी केन्या में रहती हूँ, इंडिया का मुझे नहीं पता. केन्या में अभी भी ऐसे धर्म हैं जो लेडीज को अपने धर्म में या अपने सामने नहीं आने देते. प्रवीण, मैंने तो जहाँ तक देखा है, सपोज मेरे घर कोई पंडित जी या जो महाराज जो भी आ रहे हैं, तो मुझे घर के बाहर बैठना पड़ेगा. कहीं वो मेरे घर में आ रहे हैं लेकिन मैं घर के बाहर हूँ. ऐसे धर्म भी है. इसका प्रवीण जी मतलब क्या है कि हम तो सदियों पीछे चले गए, आजाद भी हो गए, आजादी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हमारी सोच ऐसे की ऐसी रही है. इट्स वेरी रॉन्ग. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गुड डे.
0: वेरी वेल सेड मिसेस धंजल. बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कहा है कि मेरे घर को ही आए, और क्योंकि वो उसकी सोच मेरी सोच से अलग है, क्या मैं बाहर जाके बैठ जाऊंगी, क्योंकि वो नहीं सामना करना चाहते एक औरत का. कहते हैं ये बात नहीं, हमें कितने सौ साल पीछे ले जा रही है.
2: प्रवीण जी, इसको ये भी पंजाबी बोलते, सिर वडवे वेरे. सिर वडवे वेरे.
0: अच्छा, सिर वडने वाले. ओके, अब चलते हैं अमीर अली राणा. I can't wait for an AI doctor. I've been running around from one hospital to another all morning and have not gotten anywhere. ये AI doctor आ गया ना अमीर अली राणा, फिर तो वो आपके घर में ही होगा, जब चाहेंगे उसे कंसल्ट कर लेंगे.
3: प्रवीण जी, जो अभी किसी ने पूछा है ना, जन्म किसने दिया, प्रवीण जी, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे ना उन लोगों से डिस्कस कर भी चुकी हूँ. मैं भी बहुत अगेंस्ट हूँ. मैं बोलती हूँ अगर आप ब्रह्मचारी जीवन आपने एक्सेप्ट किया है, तो आप में इतनी इतनी पावर होनी चाहिए कि आप औरतें सामने से भी गुजर जाए ना, तो आप फेस कर सकें. तो मैं भी बहुत ज़्यादा ये टॉपिक पे काफ़ी बार ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया है कि देखो, ये जन्म हमको उसी औरत ने यानी माँ ने ही दिया है. लेकिन ज़्यादा इसमें मैं क्या बोलूँ, तो अच्छा नहीं होता किसी के धर्म की निंदा करना. रितु गुप्ता.
0: बिल्कुल रितु. और दूसरी ये बात है कि हमने औरतों ने ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी देर झेली भी है, कुछ खास नहीं किया कि जंजीरों से निकल आए हम. हमने ये झेला है. हम जाते हैं किसी के घर दावत पर, तो वो कहते हैं पहले मर्द बैठेंगे, पहले मर्द खाएंगे, आप इंतज़ार करें, जब तक वो हड्डियां चबा नहीं लेते आप नहीं जा सकते मेज़ पर. जब तक वो निकल ना जाए वहाँ से पेट भर कर, फिर कुछ खाना ख़त्म भी हो सकता है, ख़त्म भी हो जाए. रितु, या इट इज सच अ पिट.

0: FM, Kenya's premier Asian mix. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gittel.
1: Nairobi Senator Edwin Sifuna says adherence to the rule of law has a direct impact on investment and employment opportunities. Sifuna condemned threats previously issued by government officials against foreign investors, warning that such actions could undermine investor confidence. He emphasized that respect for the rule of law is essential in creating a stable business environment and promoting confidence among investors.
2: No foreign investor or even a local investor, if you have retired and you have put some money aside, how will you be confident that if you open a salon in town here in Nairobi, that you will be able to run that salon without being told, funga hiyo kitu today by somebody in authority?
1: Calls have been made for the government to create an enabling environment for businesses to thrive in the country. Speaking earlier today, former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i said it was a conflict of interest for government officials to engage in business. He warned that such practices could create an uneven playing field, disadvantaging other business operators and undermine fair competition.
3: Honestly speaking, one of the sacrifices lazima mtu afanye ni kwamba utaamua kama unataka kufanya biashara ama unataka kuongoza nchi. Na uwezi kufu, you can't do both. Uwezi kuwa, you are competing. Wafanya biashara badala ya kuwasaidia kuendesha biashara zao.
1: Senators have backed a motion calling for the implementation of clean cooking solutions through enhanced financing and improved budget models by both levels of government. The motion also seeks to ensure public institutions adopt clean cooking technologies. Nominated Senator Hamida Kibwana, who sponsored the motion, said traditional cooking methods contribute significantly to greenhouse gas emissions, deforestation and health complications.
4: Develops county level policies, frameworks and budgets that mainstream clean cooking into devolved energy and health functions.
5: The surgeries that are required today is mostly on the issue of the smoke from the traditional cooking.
1: The Ministry of Health says it has activated its El Nino preparedness plan in 18 high-risk counties as it seeks support from partners to mitigate the impact of expected heavy rains. Speaking during a health partners engagement on preparations for the Kenya Public Health International Conference, Public Health Principal Secretary Mary Wadone said the anticipated El Nino required a coordinated response. She noted that lessons from previous disasters has strengthened the ministry's preparedness and will help minimize the effects of the rains.
6: Planning alone will not save lives, because we need operational readiness on the ground and we need essential medicine prepositions, rapid response teams mobilized and vulnerable communities protected.
1: That's the news update on East FM.
0: East FM News. All the favorite songs you grew up listening to and the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
7: और समय ये बात जो कर रहे हैं कि औरतों को अलहदा रखें, औरतों को बाहर निकालें, औरतों को, आरफा ने कहा है कि पता है क्या, स्पिरिचुअल जो मैटर्स हैं, जो आपके स्पिरिचुअल रूहानी हैं समय मसाइल, उसमें ये बात मेक्स सेंस. क्यों? क्योंकि जब मर्द और औरत इकट्ठे होंगे, आमने सामने होंगे, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस पर काबू नहीं होता मर्द का. तो कहते फिर वो कैसे एक औरत के होते हुए ध्यान करेगा, मेडिटेट करेगा, फोकस करेगा, इबादत करेगा, नहीं कर सकता. सो स्पिरिचुअल मैटर्स में कुछ हद तक मर्द और औरत की अलहदगी काबिले कबूल है. आरफा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है. अब चलते हैं अशोक के पास, इटली.
8: प्रवीण जी नमस्ते और सुषमा वाला को नमस्ते. मनन भाई से भाई मैंने आज सुबह बात किया, वो ठीक है, चेन्नई में है. और प्यारे भटिया को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग. और ये जो हम औरत के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारा बातें हैं उसमें भी लॉ डालते हैं सभी रिलीजन जो है, औरत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. ये जो बोलते हैं कि औरत जो है बहुत बहुत सीवियर लॉ डालते हैं उसको, उन लोगों के साथ ये मत वो तो. लेकिन बहुत क्या बोल भाई, वो लेडीज जो होते हैं ना स्कूल नहीं जाते, पहले तो डेवलप नहीं थे, लेकिन यूरोप में आकर देखो, यूरोप में लेडीज ऐसा नहीं है. मैं बारिश से लंदन जा रहा था, तो मेरा बीबी नहीं गया क्योंकि खरगोश तकरीबन है, उसने किसी के साथ नहीं छोड़ा, कहता है कि तुम जाओ मैं इसके साथ रहूँगा। तो प्लेन में था तो एक जवान लड़की था, तो बात कर रहे थे ट्रेन में, तो मैंने बोला तो किधर जा रहे स्टडी करने लंदन में, वहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब इटली जाता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड है मैं उसके साथ रहता हूँ। ये फ्रीडम होते हैं इसको, सब बोलोगे इसे करते हैं तो मर्द क्या करते हैं, मर्द भी इसे करते हैं, एक नहीं दो नहीं चार होते हैं इसके। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, फ्रीडम के बारे में बोल रहा हूँ, सभी का सभी को फ्रीडम होना चाहिए। थैंक यू, चाचा। चा।
7: जब फ्रीडम की बात आती है तो चार बीवियों का जरूर जिक्र होता है। सब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये चार बीवियाँ प्रैक्टिकल नहीं है, और कोई किसी की भी बहुत कम लोगों की है, और इतने कम की गिनती में शामिल करने के लायक नहीं है, इतने कम लोग हैं, और चार तो किसी की भी नहीं है, मैंने तो नहीं सुना और ना मैंने देखा है। एक चली चल बसे तो वो दूसरी कर ले, वो अलग बात है, लेकिन अशोक ने इस बात का जिक्र किया तो मैंने ये बात की है।
9: हेलो प्रवीण जी, गुरुआ ने गुरु नानक देव ने गुरु अमरदास जी ने जड़ी स्त्री आनु ना बहुत सत्कार इज्जत दीती थी, गुरबाणी च भी लिखा आया पंड जमीए पंड निमीए पंडो होवे ब्याह पंडो होवे दोस्ती पंडो होवे रा सोके मंदा आखे जित जमे रा जान। कहिंदे सारा कुछ दोस्ती प्यार सारा कुछ हो राजे महाराजे पैदा कर दिया, फिर असी ओदे नाल नफरत क्यों करिए। सो सारिआं नूं स्त्रियां नूं उन्हां ने ना अपने बराबर समझा सी, सारिआं नूं इको समझा सी, फिर भी लोकी सुनदे नहीं है, पता नहीं की गल है। थैंक यू जी।
7: जी बिल्कुल, सिख मजहब में बिल्कुल ये अलग है। टुडे इन हिस्ट्री, थोड़ी देर के बाद

और जो यासर हैं कहते हैं टुडे इन हिस्ट्री 1999 अफ्रीकन लीडर्स साइंड द सिरते डिक्लेरेशन इन लिबिया व्हिच पेव्ड द वे फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ओएयू इनटू एयू. समझो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थी उसका नाम आज के दिन बदल दिया गया और वो बन गया अफ्रीकी इत्तेहाद यानी अफ्रीकन यूनियन. दिस डेट इज ऑफिशियली कमेमोरेटेड एज अफ्रीकन यूनियन डे. आज का दिन जो है अच्छा. इन 1994 इंडियन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड इज मेडन ओडीआई सेंचुरी. पहली समझो उन्होंने सेंचुरी बनाई 100 रन्स बनाए वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे 110 रन्स 94 का साल था. क्या बात है. और कहते हैं आज के दिन अक्षय कुमार पैदा हुए 9 सितंबर. He's 59. Oof, लगते हैं. His full name is Rajiv Hariom Bhatia. Nickname, Khiladi Kumar. Born in Amritsar. 150 films.

0: और टंजानियंस को हिरासा करने के लिए। न्यामाकीमा में चाइनीज ताजरों से रिश्वत मांगी जा रही है। नफरत का माहौल बनाने वालों के साथ सख्ती बरती जाए। नैरोबी सेनेटर एडविन सिफुना ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की तारीफ की है कि 80 बिलियन शिलिंग का समझौता जो नैरोबी काउंटी के साथ किया गया उसे मनसूख कर दिया गया है। ऐसे सौदे बगैर अवामी राय के गैर कानूनी हैं। सरकार सेनेट की तजवीज को नजरअंदाज न करे। आलमी खबरें। इसराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि जेरूसलम में यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी को बंद कर दिया जाएगा। 11 पार्लियामेंट के अराकीन को इसराइल आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिनमें जारा सुल्ताना और जेरेमी कॉर्बिन शामिल हैं। ये सब इसलिए कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एड मिलिबैंड ने पार्लियामेंट को बताया कि इसराइल गैर कानूनी सेटलमेंट से तिजारती सामान को बैन कर देगा। ये सब इसलिए कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एड मिलिबैंड ने पार्लियामेंट को बताया कि इसराइली गैर कानूनी सेटलमेंट से तिजारती सामान को ब्रिटेन में बैन कर दिया जाएगा, इसलिए कि इसराइल यहाँ नस्ल कुशी कर रहा है, एथनिक क्लेंजिंग। और कनाडा ने अमरीकी तिजारती सामान पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। स्टील से लेकर फर्नीचर तक कनाडा आने वाले सामान पे जो $20 बिलियन का है पे नए टैरिफ लागू होंगे। प्राइम मिनिस्टर खानी ने नए तिजारती ताल्लुकात फैलाने की बात की है। सऊदी अरब बयान में हूतियों की जानिब से हमलों की सख्त मजम्मत की गई है। ईरान की हिमायत पाने वाले हूती जंगजुओं ने 4 शहरों पर तेल की फैसिलिटीज पर हमले किए जहां आग लग गई। 11 के मरने की खबर है, दर्जनों जख्मी हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मजम्मत हो रही है इस खबर के आने के बाद कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हुक्मरान ने वजीर आजम को बताया था 7 अक्टूबर 2023 हमास हमला करने वाला है। 4 मुखालफी पार्टियों ने इस अफवाह की जांच की मांग की है। इसराइल में 2 माह बाद आम चुनाव रखा जाएगा। इससे पहले खबर का शाया होना नेतन्याहू के लिए खतरनाक है। और पेरिस के आईफल टावर के अमले ने हड़ताल कर दी। जब बैप्स की डेलीगेशन आई, उन्होंने दरख्वास्त की कि महिलाओं को हटा दिया जाए। फीमेल स्टाफ के हटाने पर जनता ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। पेरिस के मेयर ने तहकीक शुरू कर दी है कि जेंडर इक्वालिटी को पामाल किया जा रहा है। ये थी आज की खबरें। मैं हूं परवीन आदम।
1: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
2: A very good afternoon. Yes, we are in the second hour of the show, but I said earlier, this hour, I am looking forward to some fun. Okay, so we've had interviews before and we always have guests on our shows, different platforms. Today is with a little twist and yet so relatable because I am here with Valisa. Am I pronouncing your name correct?
3: Yeah, Valisa. Yeah.
2: Valisa Chauhan. And the best part about Valisa, yes, she's going to tell her about herself more, but the common, I'm even like getting loss of words because she comes from the radio world as well. Media and radio, everything that we do or I do, and of course the team. So welcome to East FM.
3: Thank you so much.
2: Yeah, how does it feel to be on air?
3: Do you know
2: very
3: what?
2: Dumb question.
3: No,
2: but
3: I was so excited to walk into the studios. I'm like, oh my God, his studio's in a different country. This is amazing.
2: This is amazing for sure. And it's like you're off work, but, you know, kind of
3: on
2: doing
3: work.
2: The same thing.
3: Always.
2: Yeah, so welcome and thank you for joining in on Retro to Right Now. That's my show name and it's on weekdays 1 to 4. And one of your cousin or I don't know, someone got in touch with us, with me and Ramath on socials. And when she mentioned Valisa is from the radio world, so that was the first thing that struck the chord. And I'm like, oh my God, that's going to be interesting. And yes, so tell us a little more about yourself.
3: So I'm from the UK mm-hmm. and I live in London. And I've actually been doing radio for 15 years.
2: Wow.
3: So yeah, I started in commercial radio. From commercial radio, I'm now on the BBC. Mm-hmm. So I work for BBC Asian Network.
2: Okay.
3: And it's been a journey.
2: And what's your show name?
3: It's literally just Saturdays with Valisa.
2: That's so a good name.
3: That's
2: I think
3: name.
2: We used
3: it's
2: to have
3: name.
2: Names like this. I started with a weekend show as well in East FM. So
3: I used to do a breakfast show as well.
2: Oh, wow.
3: And it was a lot of work being up and ready and